0: ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुबह के 5:37 और हो गए हैं 3 सेकंड। आप सभी को सुप्रभात और माधुरी आप सभी को देती है रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ। आप सभी भाई बहनों का प्यार और सम्मान यूं ही सलामत रहे।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक।

आप जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिएगा, उन लोगों की कद्र करना कभी मत भूलिएगा जो हमेशा आपके कद्र करते हैं।

नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1,500 से अधिक लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी नागरिक शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से अधिक देशों, मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के लोग शामिल हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि प्रभावित इलाकों से लगभग 1,500 से अधिक लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और

0: कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद के बाद प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक अहम पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में आज ही के दिन की थी। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों को उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने रक्षाबंधन के पर्व पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चली ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यात्रा का समापन पवित्र गुफा मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ होगा। इस वर्ष पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने ये यात्रा पूरी की है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और बिहार में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। खेलों में हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया है। वर्ष 1974 में हुए पहले विश्व कप में 4था स्थान हासिल करने के बाद ये भारतीय महिला टीम का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 11:09। दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 और आज मैं हूं निशा आपके साथ, आपकी हम सफ़र इस खूबसूरत म्यूज़िकल जर्नी का हिस्सा। और बस यही कहना चाहूँगी कि कभी कभी ना दोस्तों, एक गाना सिर्फ गाना नहीं होता। और ये इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि आज रक्षाबंधन है

और बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो इस खूबसूरत रिश्ते को डिफाइन करते हैं, वो भी बहुत ही खूबसूरती के साथ। जी हाँ, वो हमें किसी याद तक कभी लेकर जाते हैं। और आज तो रक्षाबंधन का दिन है, तो शायद आप में से बहुत सारे लोगों के पास भी ऐसी कुछ यादें होंगी जिनकी तरफ आप फिर से एक बार पीछे मुड़कर देखना चाहते होंगे। राखी की यादें, बचपन की यादें, और अपने भाई बहन के साथ बिताए हुए वो खूबसूरत पल जिनके होने से हम हैं, हम में अपनापन है और ज़िंदगी खूबसूरत है। और आज दोस्तों, राखी का एक धागा हमें उन सभी यादों के करीब ले जाएगा जिनसे हमारा नाता काफ़ी पुराना है। और ये यादें सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं होती हैं, ये यादें हमारे अपनों से भी जुड़ी हुई होती है। तो क्यों ना आज फिर से याद करें उन पलों को जिनके होने से ही तो ये त्यौहार उपहार से लगते हैं। एंड एज वी सेलिब्रेट द स्पेशल बॉन्ड वी शेयर विथ आर लव्ड वंस, लेट्स कीप दीज ब्यूटिफुल इमोशनल सॉन्ग्स गोइंग, इमोशंस गोइंग, एंड कंटिन्यू आर म्यूजिकल जर्नी विथ सम मोर मेलोडियस सॉन्ग्स, एडिंग अ लिटिल मोर लव, अ लिटिल मोर वार्म्थ एंड अ होल लॉट ऑफ मेमोरीज टू दिस ब्यूटिफुल ओकेजन। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस म्यूजिकल जर्नी को, एंड वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू सेलिब्रेटिंग। सुनते रहिए ये है एफ एम रेनबो 101.9। और क्योंकि खुशी का मौका है तो इसे कुछ ऐसे गानों से सजाते हैं जिनको सुनकर ये सेलिब्रेशन और सेलिब्रेट करने का मन करे। तो चलिए फिलहाल के लिए चलेंगे एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के साथ फ्रॉम द फिल्म दिल धड़कने दो।

दोपहर के 11:20 दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 के साथ। शो चल रहा है नमस्ते हेलो आदाब, मैं हूं निशा आपके साथ। और जी हाँ, आज का जो दिन है काफ़ी ख़ास है। एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ते को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। किसी की कलाई पे रक्षा सूत्र को बांधना और उस धागे के सहारे ये कहना कि मैं आपके साथ हूँ हर पल, है ना। चाहे जो भी हो, हम हैं आपके साथ। एंड इसी चीज़ को बहुत ही खूबसूरती से रक्षाबंधन के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और वैसे दोस्तों, आज का दिन बहुत खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज सिर्फ रक्षाबंधन नहीं है, आज बहुत सारी चीज़ें सेलिब्रेट की जा रही है। जैसे श्रावण पूर्णिमा भी है आज, और इस दिन खास करके रक्षाबंधन। और हमारे देश के कुछ हिस्सों में नारली पूर्णिमा भी मनाई जा रही है, जहां रक्षाबंधन दोस्तों भाई बहन के प्यार, विश्वास और एक दूसरे के लिए समर्पण का त्यौहार है। वहीं आपको बता दें कि नारली पूर्णिमा का रिश्ता समुद्र और उससे जुड़े लोगों के साथ है। जी हाँ, इस दिन जल और समुद्र के देवता भगवान वरुण की पूजा की जाती है। और जो मछुआरा समुदाय है, मछुआरे समुद्र को शांत रखने और अपनी सुरक्षा की कामना के लिए समुद्र देवता में नारियल, फूल और चावल अर्पित करते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो त्यौहार है, महाराष्ट्र और कुछ कोस्टल रीजन्स जैसे गोवा और कोंकण तट के तटीय क्षेत्रों में हिंदू मछुआरा समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक पारंपरिक और धार्मिक त्यौहार है, जिसे बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। वैसे दोस्तों, इस पर्व को मनाने के पीछे एक रीज़न ये भी है कि मॉनसून के मौसम में समुद्र में मछली पकड़ना खतरनाक माना जाता है और इस दौरान गतिविधियां बंद रहती है। इसीलिए नारली पूर्णिमा के दिन वरुण देव की पूजा के साथ ही मछुआरे नए सत्र के लिए सुरक्षित रूप से मछली पकड़ने के व्यवसाय की फिर से शुरुआत करते हैं। तो जी हाँ, एक ही दिन में हम अपने रिश्तों का जश्न मना रहे हैं और साथ ही प्रकृति के प्रति अपना आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। एक तरफ कलाई पर बंधा हुआ राखी का धागा हमें अपनों से जोड़ता है और दूसरी तरफ समुद्र को अर्पित किया गया नारियल हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता भी उतना ही गहरा है। और शायद यही खूबसूरती हमारे कल्चर की, जहाँ ये फेस्टिवल्स हमें कुछ रीज़न दे देते हैं टू पॉज, टू सेलिब्रेट, टू रिमेंबर आर रूट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू फील कनेक्टेड अपनों से, अपनी परंपराओं से और अपने आसपास की दुनिया से। तो आज के इस खूबसूरत दिन को सेलिब्रेट करते हुए चलिए अपनी म्यूजिकल जर्नी को भी आगे बढ़ाते हैं कुछ और खूबसूरत गानों के साथ, जो इस फेस्टिव मूड में थोड़ा और प्यार, थोड़ी और मिठास और बहुत सारी यादें जोड़ दें। आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब और मैं हूं निशा आपकी हमसफर इस खूबसूरत म्यूजिकल जर्नी में। तो बनी रहिए मेरे साथ। एंड जी हाँ, रक्षाबंधन को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, और इस त्यौहार पे जो मैं गाना अभी प्ले करने वाली हूँ वो ना प्ले हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, रक्षाबंधन के दिन ये हमारी प्लेलिस्ट में होता ही होता है ये ट्रैक। आई थिंक जब भी हम रक्षाबंधन को याद करते हैं तो अगर रक्षाबंधन से एक गाने को रिलेट किया जा सके तो वो यही गाना होगा। तो सुनते रहिए ये FM रेनबो 101.9।

जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और आई थिंक इससे खूबसूरत सॉन्ग रक्षाबंधन के लिए कोई हो ही नहीं सकता। एंड यस, बहुत ही प्यारे से रिश्ते को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि आप कहीं भी हो और जिस रिश्ते को आप हो सकता है पीछे भी छोड़ आए हो, उनसे भी कांटेक्ट कीजिए और आज की बधाइयाँ दीजिए, है ना। और इसी के साथ एक बार फिर से इस खूबसूरत दिन की आप सभी को शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सुन रहे आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9, सुबह के 11:30। वैसे दोस्तों, आज डेफिनेटली बहुत कुछ है करने के लिए, क्योंकि फेस्टिवल्स जो हैं होते ही ऐसे हैं जहां हम हर दिन से थोड़े से और ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। लेकिन इस भाग दौड़ में क्या आपने कभी नोटिस किया है दोस्तों कि हम अपनों से मिलने के लिए भी एक ओकेजन ढूंढने लगे हैं? जी हाँ, कभी राखी, कभी दिवाली, कभी ईद, कभी बर्थडे, कभी एनिवर्सरी। हम सबकी लाइफ इतनी बिजी हो गई है ना, वर्क, डेडलाइंस, मीटिंग्स, ट्रैफिक, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं वो लोग पीछे छूट जाते हैं जो एक्चुअली हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। चलो, शुक्र है इन फेस्टिवल्स का जो हमें मौका देते हैं हमारे अपनों से रिकनेक्ट होने का। दे गिव अस अ रीज़न टू पॉज, एक रीज़न कि हम अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा सा ब्रेक लें और उन लोगों के पास बैठें जिनसे हम सच में कनेक्टेड हैं। और अच्छी बात ये है दैट रिकनेक्टिंग डजन ऑलवेज मीन ट्रैवलिंग हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। कभी कभी रिकनेक्ट करने के लिए सिर्फ एक फ़ोन कॉल चाहिए, और यकीन मानिए दोस्तों, कभी कभी इतनी से ही दिल भर जाता है। तो आज के इस रक्षाबंधन पर अगर कोई अपना आपसे दूर है तो डिस्टेंस को एक्सक्यूज मत बनने दीजिए। कॉल देम, टॉक टू देम, रिकनेक्ट विद देम, क्योंकि वक्त तो वैसे भी निकल जा रहा है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त देना ज़रूरी होता है, और शायद फेस्टिवल्स हमें वही वक्त निकालने की याद दिलाते हैं। और याद रखिए कि रिलेशनशिप्स भी प्लांट्स की तरह होते हैं, जिन्हें पानी ना मिले तो वो धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही, अगर हम अपनों से बात ना करें, उनसे मिले नहीं, उनकी लाइफ का हिस्सा ना बने, तो डिस्टेंस सिर्फ फिजिकल नहीं रहता, वो इमोशनल भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, रिकनेक्ट करना ज़रूरी है, एज इट रिमाइंड्स अस दैट वी बिलोंग सम। वेल, ऑन दैट नोट, लेट्स कंटिन्यू विद सम मोर म्यूजिक। और क्योंकि आज रक्षाबंधन का दिन है, हम अपने घर वालों के साथ हैं, बहुत सारे लोग छुट्टी मना रहे हैं कि नहीं, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, तो ये जो गाना अभी मैं प्ले करने वाली हूँ ना, ये आप अपने सभी फैमिली मेम्बर्स के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा गाना, हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में।

A very, very good morning, dear listeners. It's 44 minutes past 11 by the studio clock. You are listening to Akashvani Hyderabad, FM Rainbow 101.9. And once again, wishing you all a very, very happy Raksha Bandhan. And jee haan, dosto, kyunki aaj hum sab ek bahut hi khoobsurat festival Raksha Bandhan ko celebrate kar rahe hain, to kyun na aaj is festival se judi ek interesting si kahani aur history mein iska kya yogdaan raha hai uske bare mein bhi jane. Dosto, hum sab Raksha Bandhan ko aaj bhai behan ke pyar aur unke special bond ke saath jod kar dekhte hain na. Lekin kya aap jante hain ki is festival se judi sabse purani prachlit kathaon mein se ek aisi kahani bhi hai jahan Raksha सूत्र एक पत्नी ने अपने पति की कलाई पर बांधा था. जी हाँ, ये कहानी जुड़ी है देवराज इंद्र और उनकी पत्नी सांची यानी इंद्राणी से. पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच एक लंबी लड़ाई चल रही थी और इंद्र देवता और देवताओं की स्थिति काफ़ी मुश्किल हो गई थी. तब श्रावण पूर्णिमा के दिन एक रक्षा विधान किया गया और इंद्राणी ने इंद्रदेव की कलाई पर एक पवित्र रक्षा सूत्र बांधा. एंड दैट मीन्स ये सिर्फ एक धागा नहीं था, इसके साथ जुड़ी थी प्रार्थना, सुरक्षा की कामना और विजय की उम्मीद. वेल, रक्षाबंधन के पीछे का सबसे खूबसूरत थॉट शायद यही है, रक्षा यानी प्रोटेक्शन, किसी अपने की सुरक्षा की कामना करना. और वक्त के साथ यही रक्षा सूत्र भाई बहन के बीच का प्यार और प्रोटेक्शन का सिंबल बन गया. जी हाँ दोस्तों, लेकिन रक्षाबंधन की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती. इस फेस्टिवल ने हिस्ट्री में भी एक बहुत खूबसूरत रोल प्ले किया है. साल था 1905. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल का पार्टीशन अनाउंस किया था और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू हुआ. उस वक्त रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी के इस सिंबल को एक नए मीनिंग के साथ सामने रखा. उन्होंने लोगों को, खास तौर पर हिंदूज और मुस्लिम्स को, एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधने के लिए इनकरेज किया एक मैसेज के साथ कि हम अलग नहीं हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. और वो राखी सिर्फ एक धागा नहीं थी, वो थी यूनिटी की निशानी, एक ऐसा थ्रेड जो कह रहा था आप और हम अलग हो सकते हैं लेकिन हमारे बीच का रिश्ता नहीं टूट सकता. एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट मेक्स रक्षाबंधन सो ब्यूटीफुल. एक तरफ इसमें भाई बहन का प्यार है, एक तरफ है प्रोटेक्शन का थॉट, और तीसरी तरफ हिस्ट्री हमें बताती है कि एक छोटा सा धागा यूनिटी, हार्मनी और टुगेदरनेस का सिंबल भी बन सकता है. तो जी हाँ, इसी खूबसूरत थॉट के साथ चलिए अपनी म्यूजिकल जर्नी को हम आगे बढ़ाएंगे और जुड़ेंगे कुछ और खूबसूरत गानों के साथ. और जुड़ने की बात आती है तो हमसे हमारे कुछ लिसनर्स भी जुड़े हुए हैं. वैसे अभी तक मैंने एक भी मैसेज शामिल नहीं किया है इस सेगमेंट में, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं एक मैसेज शामिल करने जा रही हूँ. एंड ये मैसेज है सरवर अली जी का, लिखते हैं गुड मॉर्निंग. तो आपको भी अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और कहते हैं हैप्पी रक्षाबंधन. तो आपको भी अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन. आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. दोस्तों, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं या ऑब्वियसली किसी को मैसेज भेजना चाहते हैं रक्षाबंधन की बधाई देना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 4023234822. वेल, आगे बढ़ेंगे और चलते हैं कुछ और खूबसूरत नगमों की तरफ, क्योंकि ये है एक म्यूज़िकल जर्नी, जिसे कहते हैं नमस्ते हेलो आदाब.

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर लिसनर्स, आप सुन रहे आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 शो चल रहा है. नमस्ते, हेलो, आदाब, और मैं उनिशा आपके साथ. ये है शो का सेगमेंट, जी हाँ, जिसे आई थिंक हमने कंप्लीट भी कर लिया है. 11:55 हो चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि अब से थोड़ी देर में, यानी कि दोपहर के 12:00 हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से दोपहर के 12:00 आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार और 12:05 पर इंग्लिश न्यूज़ इन इंग्लिश. एंड उसके बाद फिर से एक बार मैं लौटूंगी नमस्ते हेलो आदाब के तीसरे सेगमेंट के साथ, जहां पे मैं आपके लिए प्ले करूंगी कुछ वेस्टर्न सॉन्ग्स. जी हाँ, एक यहां पर कुल मिलाकर 4 सेगमेंट्स है, जहां पर हमारा एक सेगमेंट जो लास्ट सेगमेंट है वो सबसे स्पेशल है हेलो रेनबो का. और पहला सेगमेंट मैंने थोड़े वेस्टर्न सॉन्ग्स प्ले किए जो आई होप आपको पसंद आए होंगे. एंड इस सेगमेंट में भी कुछ खूबसूरत हिंदी गाने, और फिर जो हमारा तीसरा सेगमेंट रहेगा उसमें भी मैं कुछ वेस्टर्न हिट्स प्ले करने वाली हूँ आपके लिए, और साथ में करेंगे थोड़ी बहुत बातें. एंड यस, फ़िलहाल के लिए जो समय हमारे पास है उसे इस्तेमाल करते हुए चलते हैं एक और खूबसूरत से सॉन्ग की तरफ. ये है जसलीन रॉयल और हर्षदीप कौर की आवाज़ों में, फ्रॉम द फिल्म बार बार देखो. जी हाँ, आज एक बहुत ही खूबसूरत से फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, और अगर किसी भी फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट करना है तो अगर बैकग्राउंड में कुछ अच्छा सा गाना बजते रहे तो और भी अच्छा लगता है कि नहीं. तो इसीलिए ये खूबसूरत सा गाना आपके लिए, सुनते रहिए ये FM रेनबो 101.9.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत की खबर है। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता है। भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव के आने की आशंका बन गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति और सलामती का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें भारत की ओर से सहायता का आश्वासन दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमेरिका के उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों पक्षों ने राहत और बचाव कार्यों पर चर्चा की। अमेरिका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमरीकी डॉलर की सहायता की घोषणा की। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि गंडक नदी के जलस्तर में कल से गिरावट आ रही है।
1: गंडक नदी के पूरे प्रवाह में अभी जल स्तर भी ऊंचा नहीं था, बल्कि सामान्य से भी थोड़ा कम था। इसलिए जो भी पानी संभावित था या जो आया, उससे बहुत ज्यादा भयावह स्थिति नहीं बनी।
0: एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत तथा अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुंच को सुलभ बना रही है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। मौसम विभाग ने ओडिशा और बिहार में आंधी के साथ मूसलाधार वर्षा और बिजली का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में भी तेज वर्षा की संभावना है।

0: FM Rainbow 101.9
1: दोपहर के 1:05, जी हाँ, और ये समय यही कहता है कि हेलो रेनबो के साथ हम आपसे जुड़ने वाले हैं। दोस्तों, आप जुड़े हुए आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 के साथ, और फ़िलहाल के लिए जारी होने वाला है हेलो रेनबो का सफ़र। और जैसा कि हर रोज़ एक टॉपिक रहता है जिस पर हम ढेर सारी बातें करते हैं, तो आज तो भाई स्पेशल है, ख़ास दिन है, रक्षाबंधन है ना। और हमने बहुत सारी बातें की इस खूबसूरत रिलेशनशिप के बारे में, और कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है आज का, जो सेलिब्रेशन है, उससे भी थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है। एंड ये जो सवाल है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। वेल दोस्तों, बहुत बार हमने सुना होगा, लोग कहते हैं पैसे बचाओ, इन्वेस्ट करो, फ्यूचर सिक्योर करो। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या सिर्फ बैंक अकाउंट में बढ़ता हुआ पैसा ही इन्वेस्टमेंट है, या फिर हमारे जो रिश्ते हैं, या फिर ये कह लीजिए नॉलेज है जो हम हासिल करते हैं, जो स्किल्स हम सीखते हैं, जो एक्सपीरियंसेस हमें आगे बढ़ाते हैं, वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि दोस्तों, पैसा तो आज है, कल कम भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास खूबसूरत रिश्ते हैं, अगर आपके पास कोई स्किल है, किसी चीज़ को सीखने और समझने की क्षमता है, तो शायद आप दोबारा पैसा कमा सकते हैं। और यही है आज का आपका सवाल कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपकी नज़र में क्या है, पैसा या फिर रिलेशनशिप्स या फिर नॉलेज या फिर कोई स्किल। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं दोस्तों, हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला नंबर 0402323 0030, दूसरा नंबर 0402323 4821, और तीसरा नंबर 0402 9704715। तो ये तीन नंबर्स हैं जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। वेल, वैसे तो मैं आज यही चाहूँगी कि आज जितना हो सके आप अपना जो टाइम है वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ स्पेंड करें, इस फेस्टिवल को खूब इन्जॉय करें, एक एक मोमेंट को इन्जॉय करें, और उन मोमेंट्स में ढेर सारी मेमोरीज़ क्रिएट करें जो आगे आने वाले सालों में आप सोच कर मुस्कुराएं। और साथ में चाहूँगी कि अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो आप हमसे भी जुड़ें। तो जी हाँ, आज का यही है सवाल कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ में आपको क्या लगता है। एंड आई थिंक हमारे एक कॉलर हमसे जुड़ना भी चाहते हैं, तो आइए देखते हैं कौन है वो। हेलो रेनबो।
2: हेलो,
1: हाँ जी, नमस्कार।
2: नमस्कार जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो रेनबो में, और बताइए।
2: मैं दीपू मेहरीपट्टनम से बात कर रहा हूँ।
1: ओके दीपू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं।
2: बहुत थैंक यू मैडम, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन के।
1: और बताइए आपको क्या लगता है,
2: आपका सवाल क्या है मैडम?
1: आज का यही सवाल है कि आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है। वैसे तो मेरा क्वेश्चन यही है कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पैसा है या फिर रिलेशनशिप या फिर नॉलेज या फिर कोई स्किल। तो आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है?
2: मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ना, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट नॉलेज ही होता है।
1: ओके जी,
2: नॉलेज हो तो आप पैसे कमा सकते हो, नॉलेज हो तो आप रिश्ते भी कमा सकते हो
1: जी,
2: उसके लिए भी तो नॉलेज ही होना सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।
2: तो एक हिसाब से नॉलेज ही सब कुछ है। पैसा अभी अभी आया हुआ है, पहले कहाँ था पैसा?
1: अच्छा जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। यस,
2: हमारे पूर्वज अगर हम बोले कि हम बंदर से आए हुए हैं, तो तब कहाँ से था पैसा? इतना डेवलपमेंट आया स्किल्स के साथ।
1: जी जी बिल्कुल, नॉलेज के साथ जी।
2: तो इसीलिए मेरे हिसाब से नॉलेज ही सबसे बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और रही बात पैसा, टाइम इज ऑलवेज मनी।
1: वाह क्या बात है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, और बहुत ही अच्छी बात कही आपने, एंड आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
2: थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच। छोटा सा मैसेज सभी लोगों के लिए।
1: हाँ जी बताइए।
2: रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं जिसके पास भाई नहीं, जिसके पास बहन नहीं। और ये रक्षाबंधन जो है ना, मतलब भाई बहन का ही नहीं होता है, तो हर किसी को हम एक मान सकते हैं कि हम इसकी रक्षा करेंगे।
1: जी जी बिल्कुल, हाँ जी,
2: अपनों का त्योहार है।
1: बिल्कुल सही।
2: थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, और इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।

0: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటరు నమోదు చేసిన దానికి డిక్లరేషన్ ఫామ్ తో పాటు ఫామ్ 6, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 15 నుంచి సెప్టెంబర్ 16 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ERO, AERO లేదా BLOకు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.
1: दोस्तों आप जुड़े हुए आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 के साथ. हेलो रेनबो का सफ़र जारी है और अब मैं जुड़ने जा रही हूँ आपसे और होने वाली कुछ बातें. एंड बातों की बात करें तो एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक मैंने आपको दिया था आज, जिस पर हम बात करने वाली हैं कि आपका सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या है, या फिर यूँ कह लीजिए कि आपको क्या लगता है सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट क्या है, पैसा या फिर नॉलेज. तो जी हाँ, इस टॉपिक पर हम ढेर सारी बात करने वाले हैं और एक बार फिर से आप सभी को बंधन की ढेरों शुभकामनाएं. तो चलिए जुड़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर के साथ. हेलो रेनबो.
2: हेलो मैम.
1: हाँ जी, नमस्ते.
2: ईशा जी, मेरा नाम आयशा सिद्दीका है.
1: ओके, बहुत बहुत स्वागत है
2: मैम. टॉपिक बहुत अच्छा है.
1: थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.
2: टॉपिक पे ये बोलूंगी कि नॉलेज होना भी एक जरूरी है, उसकी भी इन्वेस्टमेंट वो होना, सेविंग होना चाहिए. नॉलेज बहुत अच्छी चीज होती है. नॉलेज होना चाहिए इंसान के.
1: जी जी,
2: जब नॉलेज हो तो इंसान आगे तरक्की भी करता है. और जो है उसके अंदर नॉलेज है तो वो मार्केटिंग में भी बहुत डेवलपमेंट होता है और आगे चल के वो तरक्की भी करता है. उससे उसकी नॉलेज के हिसाब से उसको वो जॉब भी मिलती है और नॉलेज के हिसाब से उसको जो है लोग उसकी इज्जत और कदर भी करते हैं. नॉलेज का होना और तालीम का होना, और तालीम ही जो है इंसान का एक जेवर और एक

0: ना है। तो ये चीज होना जरूरी है। पैसा भी सेविंग करना चाहिए। पैसा सेविंग इसलिए करना चाहिए और कि हमें वो पैसा सेविंग जो हम करते हैं तो वो किसी की खिदमत के लिए, खिदमत तो हमारी औकात हैसियत नहीं है, ऊपर वाला हमसे जरिया बनाता है और किसी की खिदमत लेता है, खिदमत के लिए कबूल करता है, तो वो सेविंग हम करते हैं जब कोई तकलीफ में होता है या कोई मुसीबत में होता है, तो शायद हम उनकी कुछ खिदमत कर सके
1: जी
0: उन
1: जी
0: पैसों
1: जी
0: से।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: जी। और दूसरी बात निशा जी, मेरे और शेर खान भैया की तरफ से जो है, मैं उनकी बहन हूँ, हम दोनों की तरफ से आज जो है हमारी बहन अंबिता की बर्थडे है, तो
1: ओके
0: उसको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करती हूँ कि ऊपर वाला उसको हमेशा खुश रखे,
1: जी
0: आबाद रखे।
1: जी
0: और मैम एक सॉन्ग प्ले कर दीजिए ना इसके लिए,
1: अच्छा
0: नन्ही सी मुन्नी सी आई कोई परी।
1: ओके मैं कोशिश करती हूँ।
0: ठीक है मैम,
1: जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया मैम।
1: थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जी हाँ, एंड हमारे कुछ और भी कॉलर्स हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, और अभी इन्होंने बहुत ही प्यारी बात कही कि हम जब किसी की खिदमत करते हैं तो वो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, वो भी एक अच्छी सेविंग होती है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो कुछ सेविंग नहीं करते बट अच्छा काम करते रहते हैं, और उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी भी नहीं होती, और वो लोग ना फ्यूचर के लिए टेंस्ड भी नहीं होते हैं। मतलब जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमने बहुत सारी खिदमत की है और आने वाले दिनों में वो जो खिदमत है वो हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो वो हमें मिलेगा। यहाँ पर हमारे कुछ लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो ये मैसेजेस भी हम शामिल कर लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। तो यहाँ पर हमारे साथ हैं अश्विन जी फ्रॉम कोटी, लिखते हैं जय श्री कृष्णा। तो आपको भी जय श्री कृष्णा, और लिखते हैं कि बहुत दिनों बाद आप आए। तो जी हाँ बिल्कुल, लेकिन कम से कम आए तो सही। ये लिखते हैं कि दूसरों का भला करने वालों को ही हमेशा दर्द का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले पेड़ को ही पत्थर की मार सहनी पड़ती है। और ये दुनिया वाले भी बड़े अजीब हैं, दर्द आंखों से निकले तो कायर कहते हैं और बातों से निकले तो शायर कहते हैं। वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारे मैसेज। थैंक यू सो मच इन मैसेजेस को भेजने के लिए, और आप सभी जो हमसे जुड़े हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और यहाँ पर हमारे साथ हैं हुडा फ्रॉम बाबा नगर। हुदा कहती है कि हाय निशा जी, कैसे हैं आप? तो मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे। और ये लिखती हैं कि दुनिया में एक ही नाम के कई लोग होते हैं, लेकिन पहचाना तो अपने किरदार से ही जाता है। तो जी हाँ बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे नाम के लोग हैं, जैसे मेरा नाम है उस नाम के भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन हाँ डेफिनेटली हमारा किरदार जो है अलग अलग होता है, और हम डेफिनेटली अपने किरदार से ही जाने जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दिस लवली मैसेज। एंड इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, हमारे कुछ कॉलर्स हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो उनसे भी जुड़ेंगे एक छोटे से संदेश के बाद।
2: హలో డియర్ లిసనర్స్, మన లైఫ్లో ఎక్కువ కేర్ చేసే వాళ్ళతోనే మనకి ఎక్కువ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ కూడా జరుగుతాయి. అవునా? మనం మన యాంగిల్ నుంచి చూస్తాం, వాళ్ళు వాళ్ళ యాంగిల్ నుంచి చూస్తారు. మనం మనమే కరెక్ట్ అని అనుకుంటాం, కానీ మేబీ అవతల వాళ్ళు కూడా అదే అనుకోవచ్చు కదా. అమ్మ మనకి చెప్పే కొన్ని మాటలు మనకి నసలాగా అనిపించవచ్చు, మన ఫ్రెండ్స్ చెప్పే నిజం మనకి హార్ష్గా అనిపించవచ్చు, ఒకరికి కరెక్ట్ అనిపించేది ఇంకొకరికి కంప్లీట్ గా రాంగ్ అనిపించవచ్చు. బేసిక్ గా ఒకరికి కన్సర్న్ అనిపించేది ఇంకొకరికి కంట్రోల్ లాగా అనిపించవచ్చు. అండ్ సమ్వేర్ బిట్వీన్ ఆల్ దీస్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ స్టార్ట్ అవుతాయి. అలాంటి మన ఎవ్రీడే కాన్వర్సేషన్స్ వెనుక ఉన్న ఎమోషన్స్ ని ఒక్కరి సైడ్ నుంచి కాకుండా రెండు పర్స్పెక్టివ్స్ నుంచి చూడడానికి, ప్రతి చిన్న అనుభవానికి ప్రతి భావనకి వేదిక మన ఈ సిరీస్ అనువంత. At 7 p.m. every day, only on FM Rainbow 101.9.
1: एक बजकर 45 मिनट, दोस्तों आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 के साथ। हेलो रेनबो का सफ़र है जारी, मैं हूं निशा आपके साथ, आज आपकी हम सफ़र इस खूबसूरत से म्यूज़िकल जर्नी का हिस्सा। एंड यस, हमारे कुछ लिसनर्स हैं जो अभी भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, और बहुत ही अच्छी बात है कि आप रक्षाबंधन को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और FM रेनबो को भी अपनी फैमिली मानते हैं, तभी तो आप हमसे जुड़े हुए हैं ना, इतने बिजी होने के बावजूद भी। तो चलिए, मन खुश हो गया और मैं चाहती हूँ कि और थोड़ा खुश फील करूँ, और इसीलिए आपसे जुड़ना है। आज का जो टॉपिक है, मैंने आपको बताया कि आपकी जो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, और इसका जवाब भी दे सकते हैं, और एक और क्वेश्चन है कि आपके लिए सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है।

0: पैसा या फिर नॉलेज। तो हमारे एक कॉलर हमसे जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, आइए देखते हैं कौन है वो। हेलो रेनबो,
1: हेलो मिश्रा जी।
0: नमस्कार, स्वागत है।
1: नमस्कार मिश्रा जी। नमस्कार मिश्रा जी। विश यू हैप्पी अपना रक्षाबंधन, रक्षाबंधन शुभकामनाएं।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ तो
1: ये रमेश
0: बताइए।
1: बात कर रहा हूँ,
0: के
1: आप
0: रमेश
1: काफी बहुत
0: जी,
1: अच्छा किए। तो
0: हाँ थैंक यू।
1: मेरे को सबसे ज्यादा मेरे को फ्रेंडशिप ज्यादा करना मेरे को बहुत इंटरेस्ट है। तो पैसे से भी ज्यादा मेरे को फ्रेंडशिप का बहुत मेरे को इंटरेस्ट है। क्यों बोले तो मेरे को कम से कम 50-55 साल से मेरे फ्रेंडशिप हुए है। वो लोगों से मिलजुल के रहना, उतना ना पैसे कमाए तो भी हमारा उतना तृप्ति नहीं रहता। मैंने दोस्तों के साथ मिलते जुलते योगा करते हुए, अच्छा बात करते हुए, अच्छा मंच मार्चा तू चेस तू जो कुछ मंच एंजॉय अदे जीवन चाला बागे
0: ओके
1: ओके सांगेस्तारा मैडम।
0: अ सॉन्ग।
1: हेलो जंजीर मूवी लो प्यारी है यार ये प्राण जी
0: यारी
1: मैडम
0: है।
1: चाला बहुत
0: ओके
1: जी मैडम बहुत मैडम धन्यवाद रमेश।
0: ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जी हाँ, अपने अपने आंसर्स के साथ आज भी आप हर रोज़ की तरह हाजिर हैं, और अच्छा लगा आप सभी की बातों को सुनकर। और यहाँ पर एक आंसर हमारे पास और पहुँच चुका है व्हाट्सएप के थ्रू। ये लिखते हैं, हाय निशा, यू शुड बी लाइक योर नेम एंड योर वॉइस एज वेल। ग्रीटिंग्स ऑफ द डियर फॉर रक्षाबंधन, हियरिंग यू आफ्टर अ लॉन्ग गैप। जी हाँ बिल्कुल। एंड ये लिखते हैं, नॉलेज इज़ बेस्ट इन्वेस्टमेंट, डीवी राव फ्रॉम अलवल। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और आपका जो आंसर है बिल्कुल सही है, दैट नॉलेज इज़ बेस्ट इन्वेस्टमेंट। एंड यहाँ पर हमारे साथ हुदा हैं, जो कहती हैं कि इनकी फ्रेंड आरती का बर्थडे है आज, तो उनको विश कर दीजिए। तो मैं उनको विश करती हूँ अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड यही होप करेंगे कि आपका दिन अच्छा हो, आपका फ्यूचर अच्छा हो, ब्राइट हो, है ना, और आप हमेशा हंसते रहें। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारे कुछ और कॉलर्स हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि उनके लिए सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट कौन सी है, नॉलेज या पैसा। वैसे तो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने यही कहा कि नॉलेज सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और जो हम अच्छे काम करते हैं वो अच्छी इन्वेस्टमेंट है। कुछ लोगों का आंसर था कि प्यार एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, यानी रिलेशनशिप्स। तो जी हाँ, सारे ही जो जवाब हैं वो मुझे बेहद अच्छे लगे। एंड थैंक यू सो मच इतने सारे जवाब के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए हेलो रेनबो में। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और फिलहाल के लिए आपको लिए चलती हूँ कुछ खूबसूरत गानों की तरफ, जब तक हम जुड़ेंगे अपने नेक्स्ट कॉलर के साथ। और इस गाने से पहले एक छोटा सा संदेश आपके लिए।
2: ब्रो ఆకలేస్తుంది, బిర్యానీ తిందామా?
3: ఏ ఎప్పుడు బిర్యానీ ఏం తింటాం, పద హలీం తిందాం.
2: తిందాంలే గాని హలీం అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసా?
3: హలీం ఎక్కడి నుంచి రావడం ఏంటి, మన హైదరాబాద్దే కదా.
2: కాదు, హలీం ఒక పర్షియన్ డిష్ నుండి ఎన్నో మార్పులతో ఇక్కడికి వచ్చి ఎంత పాపులర్ అయింది.
3: ఓ అవునా?
2: ఇంకా దాంట్లో చాలా న్యూట్రిషియస్ వాల్యూస్ కూడా ఉన్నాయి.
3: సరే కానీ అసలు ఇవన్నీ నీకు ఎలా తెలుసు?
2: జష్నే హైదరాబాద్, జష్నే హైదరాబాద్.
3: జష్నే హైదరాబాదా, అదేంటి కొత్తగా?
2: ఒక్క హలీమే కాదు, ఇలాంటి మరెన్నో డిషెస్ గురించి మనందరికీ చెప్పడానికి వచ్చేసింది
4: జష్నే హైదరాబాద్
2: ఎట్ 2 PM ఓన్లీ ఆన్ FM రెయిన్బో 101.9.

0: का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए विदा तो लूंगी, लेकिन आपसे कुछ कहना है। जी हाँ, एक बात है जो आपसे कहनी है, एंड आई थिंक आपको भी वो जानने में ज़रूर इंटरेस्ट होगा। वेल दोस्तों, कहते हैं कि बड़ी होना बहुत अच्छा होता है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपका कोई बड़ी है तो वो काम आप और अच्छे से करते हो, है कि नहीं? और दोस्तों, रेडियो पर आरजे के साथ तो आप रोज़ रहते हो, है ना? लेकिन अगर एक आरजे के साथ एक और आरजे जुड़ जाए तो क्या बात है ना, मस्ती डबल हो जाती है। तो जी हाँ, आपको बताना चाहूंगी कि अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, है ना? लेकिन अगले हफ्ते कुछ अलग होगा। यहाँ पर मैं अकेले स्टूडियो में नहीं रहूंगी, मेरे साथ कोई और भी मेरे साथ रहेगा। तो जी हाँ, अगले हफ्ते यानी वेंसडे को FM रेनबो 101.9 पर होने वाला है एक खास शो, आरजे बड़ी शो, जहाँ पर मैं तो रहूंगी, लेकिन इस बार मेरे साथ होंगे मेरे आरजे बड़ी। बातें होंगी डबल, मस्ती होगी डबल, और शायद थोड़ी सी नोक झोंक भी। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि मेरा आरजे बड़ी होगा कौन? तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि कौन है मेरा आरजे बड़ी?
1: मुझको पहचान लो, मैं हूं कौन?
0: कौन? डॉन?
1: अरे नहीं, मैं हूं आपका दोस्त आरजे जेडी।
0: अच्छा, आरजे जेडी। जी हाँ, तो ये तो इनके बताने का अंदाज था कि मेरे आरजे बड़ी कौन होने वाले हैं, और अभी तक आपको पता चल गया होगा कि मेरे आरजे बड़ी होने वाले हैं आरजे जेडी।
1: जी हाँ, तो दोस्तों, तो वेनेसडे को तैयार रहिएगा आरजे निशा और आरजे जेडी की जोड़ी के साथ।
0: जी हाँ, दो आरजे
1: एक शो
0: और मस्ती होगी डबल।
1: डबल,
0: तो
1: मिलते हैं अगले वेनेसडे।
0: जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ FM रेनबो पर। तो जी हाँ, अगली बार जब मैं मिलूंगी तो अपने आरजे बड़ी के साथ मिलूंगी, और बड़ी साथ में, और कोई धमाल ना हो। तो जी हाँ, टोटल धमाल होने वाला है यहीं FM रेनबो के स्टूडियो में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और फिलहाल के लिए धमाल करने के लिए स्टूडियो में आरजे राजेश आ चुके हैं। तो जी हाँ, काफ़ी एक्साइटेड हैं ये भी आपसे जुड़ने के लिए, एंड यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत प्लेलिस्ट के साथ ये आ चुके हैं। तो चलिए, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा, इस वायदे के साथ की होगी आपसे फिर एक बार मुलाकात, और उस अगली मुलाकात तक अपना रखिए अच्छा सा ख्याल, और अपने अपनों का भी रखिए अच्छा सा ख्याल, और सुनते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सुनते रहिए FM रेनबो 101.9।
2: FM रेनबो 101.9।

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंग दी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न ए हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
0: जश्न ए हैदराबाद।
2: మీరు వింటున్నారు ఆకాశవాణి।

इतिहास की शुरुआत आग से हुई, आग शक्ति है, आग जिंदगी है, तुम सब में एक चिंगारी है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। जो बुराई पास आएगी जल जाएगी, जो पाप करीब आएगा जल जाएगा। तुम सब शोले हो, मशाले हो, चलते रहो।

फरिंदर से अभी आप तेलुगु प्रोग्राम सुन रहे थे। अब आगाज होता है उर्दू प्रोग्राम नए रंग का। इस वक्त रात के 9:30 और 20 सेकंड हुए हैं और आप सुन रहे हैं 101.9 FM।

आदा वर्ज सामाइन, आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। नैरंग प्रोग्राम सुनने वाले सभी सामाइन की खिदमत में आरजे नूर अफशां का पुरखलूस आदाब। सामाइन, आज हम बहुत ही ख़ास और रंग बिरंगे प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। आज राखी बंधन भी है, रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी रक्षाबंधन। हमारे प्रोग्राम्स में शामिल है खिरत कलाम पाक, हरफ़ ताबिंदा, डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत इंटरव्यू डॉक्टर रामपत प्रताप माथुर से, इसके अलावा गीत सुरीले गाते जा प्याम शब, और एक खसूसी प्रोग्राम आप सुनेंगे यानी जश्न मिलादुन नबी पर रेडियो रिपोर्ट आप सुनेंगे। तो ये आगाज़ हम करते हैं खिरत कलाम पाक से। पेशकश है हक की।

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: खिरते कलामे पाक अभी आप सुन रहे थे पेशकश थी हक की। अब आइए सुनते हैं हर्फिता बिंदा पेश कर रहे हैं एम ए हाई।
2: समय तसव्वुर कीजिए कदीम जमाने का, लोगों के पास कितने वसाइल रहे होंगे। जाहिर है बहुत ही कम, लेकिन वो सोचते कितना थे, गौर व फिक्र में कितना वक्त गुजारते थे, उनकी फिक्र में कितनी गहराई थी और जहन भी काफ़ी वसी था। तभी तो आज सदियों बाद भी दुनिया अलबरूनी को, अंसारबी को, अज़ज़वाहिरी को, बोयली सीना को, आइंस्टाइन को और न्यूटन को याद करती हैं। ये तमाम शख्सियात आलमी तारीख का लाजमी हिस्सा बन चुकी हैं। इनके बगैर तारीख अधूरी है। इन शख्सियात का अपने मुल्क के लोग फख्र करते हैं जो इनके

हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की। सामिन, इस त्यौहार की खूबसूरती सिर्फ राखी बांधने तक महदूद नहीं। इस मौके पर खानदान के अफराद एक दूसरे से मिलते हैं, खुशियां बांटते हैं, पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। बहन भाई बचपन के वो दिन याद करते हैं जब कभी मामूली सी बात पर झगड़ा होता था, कभी एक दूसरे की शिकायत की जाती और कभी दोनों मिलकर शरारतें करते। बचपन में बहन भाइयों के दरमियान होने वाली नोक झोंक भी इस रिश्ते को मज़ीद खूबसूरत बना देती है। कभी बहन भाई की चीज़ छुपा देती है तो कभी भाई बहन को चिढ़ाता है, लेकिन अगर कोई बाहर वाला इनमें से किसी एक को परेशान करता है तो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े नज़र आते हैं। यह इस रिश्ते की ख़ास बात है कि मोहब्बत के साथ साथ एक दूसरे के लिए फिक्र और अपनायत भी मौजूद होती है।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा। रक्षाबंधन के इस खूबसूरत मौके पर हम अपने रिश्तों की कदर करने का यानी एहसास करें, रिश्तों का एहसास करें, इनकी कदर करें, इनकी बात सुनें, इनकी मुश्किलात में इनका साथ दें, यानी एक दूसरे का साथ दें। सिर्फ भाई बहन ही नहीं बल्कि सब एक दूसरे का साथ दें और छोटी छोटी बातों को दिल में रखने के बजाय मोहब्बत से माफ़ कर दें। ज़िंदगी में दौलत, कामयाबी और शोहरत अपनी जगह, लेकिन वो रिश्ते जो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े होते हैं, इनकी कीमत किसी चीज़ से नहीं लगाई जा सकती।

गीत सुरीले गाते जो अभी आप सुन रहे थे रक्षाबंधन की कुछ बातों के साथ। इसी के साथ यानी इसी गीत के साथ प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जाओ और हमारा नैरंग प्रोग्राम भी हमें ख़त्म करने की अब वक्त हमसे इजाज़त चाहता है। चलते चलते हम आपको सुना दें।

0: मुअत्तले शौक के आदाब निराले हैं बहुत, दिल भी कातिल को दिया करते हैं सर से पहले। सच्ची मोहब्बत किसी अजीम मकसद से वाबिस्तगी या इखलास का तकाजा सिर्फ जाहिरी कुर्बानी नहीं बल्कि सबसे पहले दिल की सच्चाई है। ताहम ये भी याद रखना चाहिए कि मोहब्बत और वफादारी में अपनी इज्जत अकल और हक को फरामोश नहीं करना चाहिए। अंधी अकीदत इंसान को नुकसान भी पहुंचा सकती है। किसी के लिए कुर्बानी देने से पहले ये देखना जरूरी है कि वो इस कुर्बानी का अहल भी है या नहीं। मोहब्बत इंसान को बुलंद भी करती है मगर बेबसीरत मोहब्बत इंसान को आजमाइश में भी डाल सकती है। अजीम मकासिद के लिए पहले दिल को खालिस बनाना जरूरी है क्योंकि खुलूस के बगैर कोई कुर्बानी मुमकिन नहीं होती। दिल अल्लाह सच्चाई और नेकी के सुपुर्द कीजिए और इंसानों से मोहब्बत जरूर कीजिए मगर अपने इज्जत शऊर और खुददारी को कभी कुर्बान न कीजिए। यही मुतवाजन मोहब्बत और कामयाब जिंदगी का रास्ता है।
1: नदीम अख्तर जैदी से पैगाम शब अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ उर्दू प्रोग्राम नए रंग खत्म करने की आरजे नूर अफशां को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए 101.9 FM MHz पर रोजाना रात 9:30 बजे उर्दू प्रोग्राम नए रंग। आप सुनते रहिए और हमें अब दीजिए इजाजत।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 FM MHz पर। इस वक्त रात के 11 बजने ही वाले हैं और कुछ देर में समाचार दिल्ली से प्रसारित होंगे।

0: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
1: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं।

0: यह देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल यह झूठा प्रचार कर रहे हैं। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज भारत में यूरोपीय संघ के निवर्तमान राजदूत हर्वे डेल्फिन को विदाई दी। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत बनाने में निवर्तमान राजदूत के योगदान की सराहना की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेल्वन सेल्थिन कुमार आज रात PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकस से खेलेंगे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेनू कटारिया। India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar informed this in a social media post. The minister said that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jayashankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and Reiki team for tunnel rescue operations is also on board. He also reiterated India's support to Nepal's ongoing relief and rescue efforts. Earlier, India had sent more than 47 tons of emergency relief supplies in 2 flights. Meanwhile, the death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 547, with 1,545 people still missing as rescue teams search riverbanks and isolated settlements for survivors and bodies swept downstream. Authorities have evacuated more than 800 people from affected districts and issued fresh warnings after a 5.1 magnitude earthquake struck southwestern China, raising fears of further flooding. India has launched a major rescue and relief operation. The Ministry of External Affairs has said that 320 Indian

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्र की ताजा अंक में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आज इस स्टूडियो में आमंत्रित हैं देश के आर्थिक मामलों के जाने माने विशेषज्ञ एके भट्टाचार्य. श्री भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार, धन्यवाद.
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से.
0: Benchmark domestic stock market indices rise, Sensex adds over 300 points, Nifty settles near 24,200 level. India's industrial output grows by 6.7% in July this year, and India's foreign exchange reserves surge to a record high of $729.3 billion US dollars as of the previous week.

घरेलू शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांक लाभ के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 300 अंक से अधिक उछला। निफ्टी 24,200 के स्तर के नजदीक बंद हुआ। देश के औद्योगिक उत्पादन में इस वर्ष जुलाई में 6.7% की वृद्धि हुई और देश का विदेशी मुद्रा भंडार 21 अगस्त को समाप्त सप्ताह में बढ़कर अब तक के सर्वोच्च स्तर 729 अरब 30 करोड़ डॉलर पर पहुंचा।

0: And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: आइए अब शुरू करें शेयर बाजार से खबरों का सिलसिला. घरेलू शेयर बाजार में आज खरीदारी तेज रही और प्रमुख सूचकांक लाभ में रहे. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 331 अंक यानी 0.43% की बढ़त के साथ 77,265 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 85 अंक यानी 0.35% की तेजी दर्ज करता हुआ 24,176 पर पहुंच गया. विस्तारित बाजार की ओर चलें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप 100 इंडेक्स में मामूली बढ़त देखने को मिली, जबकि स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 0.2% लाभ के साथ बंद हुआ.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड इन पॉजिटिव जोन टुडे. सेंसेक्स एडवांस बाय 331 पॉइंट्स 0.43% टू क्लोज एट 77,265. निफ्टी गेन बाय 85 पॉइंट्स 0.35% टू सेटल एट 24,176. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index eked out a marginal gain, while the small-cap 100 index added 0.2%. Earlier, the markets opened with a gap up after falling for two consecutive sessions and traded in a narrow range throughout the day.
1: नजर डालें सेंसेक्स पैक पर तो 30 में से 21 कंपनियों के शेयर आज लाभ के साथ बंद हुए. लाभ उठाने वाली प्रमुख कंपनियों में सबसे अव्वल रही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसके शेयर 4.1% बढ़त के साथ बंद हुए. इन्फोसिस को 3.3% का और टेक महिंद्रा के शेयर 3.2% मुनाफे के साथ बंद हुए. उधर घाटा उठाने वाली प्रमुख कंपनियों में आईसीआईसीआई बैंक के शेयर 1.3% लुढ़क गए. अल्ट्राटेक सीमेंट को 1.2% का नुकसान हुआ, जबकि एशियन पेंट्स के शेयर 1.1% नीचे आकर बंद हुए.
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 17 out of the 28 sectors edged upward. Among the top gainers, focused IT jumped 3.4%, information technology climbed 3.3%, and PSU banks rose by 1.3%. In contrast, insurance decreased by 0.6%, realty, consumer durables, and oil and gas each dipped by 0.3%, and FMCG as well as energy fell by 0.2%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,308 companies advanced, 2,029 companies declined, and 212 companies remain unchanged.
1: नजर डालें रुपए की स्थिति पर तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 16 पैसे मजबूत हुआ. 95.39 के स्तर पर बंद हुआ. एकेबी, आज हम बाजार की गतिविधि पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे. बाजार में तेजी रही, क्या प्रमुख कारण रहे आज की तेजी के पीछे?
2: प्रधान जो कारण जो आज हमें दिखने को मिला वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की जो परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर स्टॉक मार्केट ने काफी इसमें प्रकाश डाला है. अगर आपको आपको मालूम होगा कि वैश्विक बाजार में एनवीडिया का जो परफॉर्मेंस रहा है एक दो दिन पहले, उसका जो परफॉर्मेंस जो है वो काफी आशाजनक रही है, और उस आशाजनक परफॉर्मेंस से अनुप्राणित होकर आज के आईटी सेक्टर में काफी उछाल दिखने को आई है. हालांकि बैंकिंग सेक्टर में भी काफी उछाल आई है, पर उतना नहीं आया जितना कि आईटी सेक्टर में आई है. मैं कहूंगा कि जो पिछले दो दिन की जो गिरावट के बाद जो बैंकिंग और मेटल स्टॉक्स में ज्यादा सेंटर्ड थी, आज की जो

0: सर्वाइवल जो है स्टॉक मार्केट की वो आईटी सेक्टर से ज्यादा जुड़ा हुआ है. करीबन 3% आईटी सेक्टर का एक दिन में बढ़ना, ये आईटी सेक्टर का एक नया असेसमेंट मुझे लग रहा है कि हो रहा है कि पहले में जो एआई लेड जो एक एक हताशा एक छा रही थी, मुझे लग रहा है कि वो हताशा को दूसरी तरह से उसका एक आकलन किया जा रहा है. उसी का परिणाम आज स्टॉक मार्केट हुआ था, पहली बात. दूसरी बात यह है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो अभी भी पैसा ले जा रहे हैं, पर अगर आप नेट बाई नेट खरीदी और नेट बेचने में अगर उसको देखें कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो बेचना जो है उसकी गति थोड़ी कम हुई है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो खरीदना नेट बाई जो हुआ है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है. तो उससे जो मार्केट में थोड़ी बहुत एक स्टेबिलिटी आई है वही आज के मार्केट में वो दर्शा रहा है. और तीसरी बात यह है कि मार्केट में शायद कुछ आशा की किरणें को दिखने को आई. वो आशा की किरणें लगा कि मुझे दो तरफ से आई. एक तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो नंबर जो आए हैं उसमें हालांकि वो लैगिंग नंबर्स हैं, वो फॉरवर्ड लुकिंग नंबर्स नहीं है, पर उसमें ये लगा कि शायद फेस्टिवल सीजन के आने वाले में भी शायद इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो जो एक स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहेगी. और दूसरी बात कि बहुत जो मार्केट के जो खिलवाड़ जो हैं वो समझ रहे हैं कि जो केविन वॉश का जो जैक्सन होल में जो उनका एक बहुत ही एक एक एक घंटे डेढ़ घंटे बाद मेरे ख्याल से जो वायोमिंग में जो हर साल में एक कॉन्फ्रेंस होता है जैक्सन होल में, वो उसको सारा विश्व के सारे जो मार्केट विशेषज्ञ हैं वो देखते रहते हैं कि उनका इन्फ्लेशन के ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर और वैश्विक परिस्थिति के ऊपर उनकी क्या टिप्पणियाँ होंगी, क्या उनके इंगित होंगे उसको देखे हुए. और जो खबरें में जो आ रही हैं आज के मार्केट में, जो लगा मुझे कि जब मार्केट चल रहा था कि शायद वो एक ऐसा एक एक संदेश देंगे जो संदेश मार्केट के लिए उतना बुरा नहीं हुआ है, उसके लिए भी एक आशाजनक एक मार्केट का परफॉर्मेंस रहा है.
1: Well, ATV, given us a strong summary of what happened in the market today and what are the influences for the market as well. The IIP figures for the month of July, which has gone up by 6.7% and it covers four sectors, it came after market hours. So clearly, it should have an impact when market reopens next week starting Monday.
0: Well, you are underestimating the market's intelligence mechanism. The market's intelligence mechanism is such that they anticipate these numbers, and these numbers were already doing the rounds that particularly the manufacturing sector has done very well, which is why the market is reacted even before the numbers were officially made public.
1: Because the PMI for July and August is well above 50, absolutely, which shows expansion and not contraction. Absolutely. So yes, I do agree with what you are saying. Just coming back to what's happened today in the market, despite the closing auction session for the F&O expiry, the market still went up today. What is it about the market today, apart from information technology, that is really, you know, fueling that kind of confidence? You mentioned about banking as well. Bank Nifty fell only by 14 points, that index, but the PSU banks went up by 1.3%. Why is that?
0: Well, there is a certain clouded outlook on credit. The banking sector is, in a sense, split quite wide open, whereas the public sector, so credit outlook is far, far better, and their performance criteria measured by the net NPAs, net non-performing assets, is as good, if not better, than the private sectors. On the contrary, the private sector, private banks, are still struggling with how to take care of the credit. You know, the credit demand growth is still very tepid. So, which is why you will see that if you take the overall banking sector, they have done well.

0: number is still at a very healthy above 6.5%. So it's still not what it ought to be. It should be manufactured in a country of India's nature and complexity, should be in double digit. But still, I would say that reaching a level of 6.5 is a good sign.
1: यहाँ पर एक ये भी समझना चाहेंगे कि जून की तुलना में थोड़ा सा हम वृद्धि दर में थोड़ा सा हम कमी देख रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये आंकड़े क्या विश्वास दिला रहे हैं हमें इस पूरे वर्ष के यदि अवधि को हम देखें तो जुलाई में जो अनुमान था उससे बेहतर प्रदर्शन रहा.
0: जरूर आपने एक अच्छा प्रश्न किया है. मुझे जो ये लग रहा है कि जो आईआईपी नंबर जो है ये वैल्यू बेस्ड नहीं है, ये वॉल्यूम बेस्ड है. इसका मतलब ये है कि ये कितने हजार यूनिट या कितने लाख करोड़ यूनिट प्रोडक्शन हुआ है उसको ये आकलन करती हैं, ना कि इनके दाम आकलन करती हैं. तो उस तरफ से अगर आप देखेंगे ये वॉल्यूम डाउन ट्रेंड एंड विच इज वाई द माइनिंग एंड द क्वेरिंग द नंबर्स आर वेरी अनइम्प्रेसिव. बट आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द मैन्युफैक्चरिंग इफ यू लुक एट द अप्रैल जुलाई कंबाइंड नंबर इज स्टिल एट अ वेरी हेल्दी अबव 6.5%. सो इट स्टिल नॉट वॉट इट ऑट टू बी. इट शुड बी मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री ऑफ इंडियाज नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी शुड बी इन डबल डिजिट. But still, I would say that reaching a level of 6.5 is a good sign.
1: यहाँ पर एक ये भी समझना चाहेंगे कि जून की तुलना में थोड़ा सा हम वृद्धि दर में थोड़ा सा हम कमी देख रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये आंकड़े क्या विश्वास दिला रहे हैं हमें इस पूरे वर्ष के यदि अवधि को हम देखें तो जुलाई में जो अनुमान था उससे बेहतर प्रदर्शन रहा.
0: जरूर आपने एक अच्छा प्रश्न किया है. मुझे जो ये लग रहा है कि जो आईआईपी नंबर जो है ये वैल्यू बेस्ड नहीं है, ये वॉल्यूम बेस्ड है. इसका मतलब ये है कि ये कितने हजार यूनिट या कितने लाख करोड़ यूनिट प्रोडक्शन हुआ है उसको ये आकलन करती हैं, ना कि इनके दाम आकलन करती हैं. तो उस तरफ से अगर आप देखेंगे ये वॉल्यूम

0: अब 40 करोड़ डॉलर बढ़कर अब तक के सर्वोच्च स्तर 729 अरब 30 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के सबसे बड़े घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 9 अरब 40 करोड़ डॉलर बढ़ी और ये स्तर 591 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। वहीं स्वर्ण भंडार में 2 अरब 80 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़कर 114 अरब 20 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के सुरक्षित भंडार में 26 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई और ये 4 अरब 90 करोड़ डॉलर के आसपास पहुंच गया है। उधर विशेष आहरण अधिकार यानी एसटीआर में 112 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई और ये 18 अरब 80 करोड़ डॉलर के स्तर तक पहुंच गया है। एकेबी रिकॉर्ड स्तर पर मुद्रा भंडार अपना पहुंचा है, क्या दर्शा रहा ये और किन कारणों से इसमें यह बढ़ोतरी हम देख रहे हैं?
1: अगर जब पश्चिम एशियाई में जब युद्ध छिड़ा जब उसके बाद तेलों के दाम बढ़े तब हमारे पास उस समय करीबन 722 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा कोष था। उसके बाद ये काफी नीचे आ गया था, करीबन 680 तक 685 तक आ गया था। और आपको ये शायद नोटिस करेंगे, ये नंबर जो है ये 21 अगस्त के नंबर हैं और 21 अगस्त तक हमारी जो नई जो स्कीम्स जो थी FCNRB के नीम्स जो NRI के जो पैसे जो आ रहे थे वो पैसे काफ़ी अंदर आए हैं, करीबन 50 बिलियन डॉलर या 56 बिलियन डॉलर की पैसे जो आए अगस्त 31 तक उसका अवधि है वो आएंगे। मुझे लगता है कि ये अभी नहीं है और भी थोड़ा बढ़ेगा और ये बढ़ने का मतलब ये है कि हमारी जो मंथली इम्पोर्ट की जो बिल जो हैं वो 10 महीने नहीं शायद 11 से 12 महीने तक की हमारी जो कैपेसिटी है उसमें वृद्धि होगी। ये एक मैक्रो इकोनॉमिक दृष्टिभंगी से एक्सटर्नल सेक्टर की ये जो छवि जो है ये मार्केट के लिए इकोनॉमी के लिए ये एक पॉजिटिव एक सिग्नल है।
0: यहाँ पर श्रोताओं के हित में FCNRB ने किस तरह से भूमिका निभाई बहुत संक्षेप में? ये
1: NRI को एक फैसिलिटी दी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि वो अपनी जो विदेश के मुद्रा यहाँ पे वो जमा कर सकते हैं और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सब्सिडी भी देगी, जिससे कि और जो काफी कमर्शियल बैंकों ने का उनका लेवरेज देकर वो पैसा यहाँ पे ला सकते हैं। तो जो समस्या नॉर्मल जो जो जो जो FCNR NRI डिपॉजिट में होता है कि एक्सचेंज रेट के जो तारतम्य जो होता है उससे ज्यादा इंसेंटिव वाइज नहीं होते हैं, इस इंटरेस्ट रेट की जो जो जो स्ट्रक्चर जो थी वो उससे NRI ने काफी
0: लाभ
1: उनका लाभ उठाया और इसीलिए करीबन 56 बिलियन डॉलर का पैसा अभी तक आ चुका है।
0: जी।
2: In more news, Prime Minister Narendra Modi has said that the Jan Dhan Yojana has delivered unprecedented scale and transformative outcomes with an unparalleled impact in the last 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the Jan Dhan Yojana is playing a significant role in advancing financial inclusion and empowering people across the country. Under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, more than 59 crore accounts have been opened so far, with total deposits amounting to 3,17,000 crore rupees. The scheme was launched by Prime Minister Modi on this day in 2014. As the world's largest financial inclusion initiative, the scheme continues to redefine access to banking for all Indians. We have a report.
3: Under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, more than 59 crore accounts have been opened so far, with total deposits amounting to 3,17,000 crore rupees. As the world's largest financial inclusion initiative, the scheme continues to redefine access to banking for all Indians. The average deposit per account is 5,356 rupees. Under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, 78% of the accounts have been opened in rural or semi-urban areas, and approximately 56% of the accounts are owned by women. Over 41 crore rupee cards have been issued to Jan Dhan account holders. The scheme has also empowered millions, particularly the marginalized sections, to access banking and financial services to improve their socio-economic conditions. Due to initiatives like Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, India's financial inclusion index has risen from 53.9 in 2018 to 67. 7 this year, showcasing deeper access to credit insurance.

0: सेविंग एंड डिजिटल पेमेंट्स। अनुपमिश, आकाशवाणी न्यूज, दिल्ली।
1: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री फ्रांस्वा फिलिप शैंपेन के बीच कनाडा के टोरंटो में आर्थिक और वित्तीय वार्ता संपन्न हुई। दोनों पक्षों ने संयुक्त बयान में कहा कि ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच इस वर्ष मार्च में नई दिल्ली में हुई बैठक में द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय सहयोग को मजबूत करने के लिए किए गए वादे को आगे बढ़ाती है। दोनों देशों ने 2026 के अंत तक भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत पूरी करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया। मंत्रियों ने वैश्विक आर्थिक घटनाक्रमों और घरेलू नीतिगत प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने तथा दोनों देशों के बीच वित्तीय और वाणिज्यिक संबंधों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की। मंत्रियों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $70 बिलियन कनाडाई डॉलर तक बढ़ाने की इच्छा को भी दोहराया। भारत ने जल्द से जल्द द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत शुरू करने की अपनी तत्परता व्यक्त की। और आगे बढ़ते हैं
2: टू द एशियन मार्केट्स
1: और नजर डालें एशिया के प्रमुख बाजार दक्षिण कोरिया पर। वहां कोस्पी सूचकांक 1.8% बिकवाली के दबाव में नीचे आ गया। उधर जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 0.4% की वृद्धि हुई।
2: In more news, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said renewed diplomacy with Washington remains possible if the US changes its approach and abandons coercion. Ms. Araghchi said in a social media post that the US should build trust, speak respectfully, acknowledge our rights and uphold commitments. He also described recent talks with Qatar's Prime Minister and Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Al Thani as productive and creative. Moving on to the crude oil market, global crude oil prices eased today. Brent crude was trading 0.5% down at $89.30 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.8% lower at $82.84 per barrel when reports last came in.
1: आइए श्रोताओं आपको लिए चलें अंतिम चरण में सर्राफा बाजार। भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.7% बढ़कर 1,59,578 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं चांदी 1.8% बढ़कर 2,43,892 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से केबी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार, धन्यवाद।
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices rise. Sensex adds over 300 points. Nifty settles nearly 24,200 level. India's industrial output grows by 6.7% in July this year. And India's foreign exchange reserves surged to a record high of $729.3 billion as of the previous week. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खूबसूरत से गीत के साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं।
1: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इनमें त्रिशूली एक परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वे लापता हैं। मंत्रालय ने बताया कि कल 149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच गए हैं। उधर चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। उधर नेपाल में आई अचानक बाढ़ के बाद वहां फंसे महाराष्ट्र के

0: 290 लोगों के सुरक्षित होने की पुष्टि हुई है, जबकि 60 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। आपदा के समय नेपाल में महाराष्ट्र के जिन 395 लोगों के मौजूद होने की जानकारी मिली थी, उनमें से 105 भारत लौट रहे हैं, जबकि राज्य नियंत्रण कक्ष का बाकी 290 लोगों से संपर्क हुआ है। वे सुरक्षित हैं, लेकिन वहीं फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के कल 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, PMO और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्य बल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल हल्की बारिश हुई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar informed this in a social media post. The minister said that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jaishankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and Reiki team for tunnel rescue operations is also on board. He also reiterated India's support to Nepal's ongoing relief and rescue efforts. Earlier, India has sent more than 47 tons of emergency relief supplies in two flights. Meanwhile, the death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 547, with 1,545 people still missing as rescue teams search riverbanks and isolated settlements for survivors and bodies swept downstream. Authorities have evacuated more than 800 people from affected districts and issued fresh warnings after a 5.1 magnitude earthquake struck southwestern China, raising fears of further flooding. India has launched a major rescue and relief operation. The Ministry of External Affairs has said that 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said around 100 people of Indian origin holding other nationalities also remain uncontactable. Addressing the media in New Delhi yesterday, Mr. Jaiswal said that 63 Indian nationals working at Trishuli 1 hydropower project were rescued from the affected area. Mr. Jaiswal informed the media that 21 Indian nationals from Tamil Nadu who had reached Kathmandu from the flood-affected area on Thursday have arrived in New Delhi yesterday.

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। 12:11 और ये वक्त कार्यक्रम निशिगंधा का। निशिगंधा में सबसे पहले जो गीत आप सुनने वाले हैं उसे हमने लिया है फिल्म कुदरत से, और 1981 की फिल्म है ये कुदरत। कहानी का लेखन और निर्देशन चेतन आनंद साहब का रहा। मुख्य भूमिकाओं में फिल्म में आपको दिखेंगे राजेश खन्ना और हेमा मालिनी, जबकि फिल्म में सहायक भूमिकाओं में प्रिया राजवंश, राजकुमार और विनोद खन्ना भी दिखे। गीत जो आप सुनने जा रहे हैं, संगीतकार हैं आरती बर्मन और इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। लता जी की आवाज़ में बेहद ही मधुर सा कर्णप्रिय ये प्यारा सा गीत आप सबके नाम। आकाशवाणी गोल्ड, अंजलि है आपके साथ।

रात के सफर पर जब चल निकलेंगे तो कितनी ही बातों का, यादों का, जज्बातों का, खुशी का, गम का अफसाना छिड़ेगा और बस दिल में महसूस होगी कहीं गुदगुदाहट तो कहीं कसक और टीस। बस इन पलों को जीते हुए पूरा करेंगे निशिगंधा का ये हसीन सा सफर। सफर हंसी इसलिए क्योंकि जब आप सब साथ होंगे और साथ अच्छा हो तो सब कुछ भला ही लगता है, चाहे वो कड़वे पल हो या हंसी खुशी से लबरेज वक्त। जी हाँ, और अगला गीत जो आप तक पहुंच रहा है निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा की 1981 में बनी त्रिकोणीय प्रेम पर आधारित मूवी सिलसिला से। फिल्म सिलसिला में अमिताभ, रेखा, संजीव कुमार, जया भादड़ी और शशि कपूर मुख्य किरदारों में दिखे और फिल्म का जो संगीत पक्ष था ना वो भी बहुत ही रोचक रहा। कुल 7 गाने इस फिल्म में रहे। फिल्म में संगीत किसी फिल्मी संगीतकार के बजाय प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया और प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने दिया। जो गीत आप सुनेंगे उसके बोल लिखे हैं जावेद अख्तर साहब ने। तो चलिए, ये एक और खूबसूरत सा नगमा आप तक पहुंच रहा है। फिल्म कौन सी है? जी हाँ, फिल्म है सिलसिला और मुझे लगता है कि आप भी इस गीत को बेहद रात के इस हसीन और खूबसूरत से माहौल में काफ़ी पसंद करेंगे। लता जी की आवाज़ में है ये गीत और इस गीत का जो संगीत तैयार किया है शिव हरि ने और गीत के बोल तो आपको बताया है जावेद अख्तर साहब के हैं।

फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और इस वक्त निशिगंधा का ये हसीन सा सफर हम लोग यहाँ पर तय कर रहे हैं। अंजलि है आपके साथ और गीत जो आपने सुना था फिल्म महान से था, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में, और इस गीत का म्यूजिक कंपोज किया था आर डी बर्मन साहब ने, गीत लिखा था अनजान ने। और फिल्म किसके डायरेक्शन में बनी थी ये महान मूवी, 1983 में रिलीज हुई थी एस रामानाथन के डायरेक्शन में। अब जो गीत आप सुनने जा रहे हैं 1981 में एक प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म एक दूजे के लिए फिल्म से है और फिल्म के डायरेक्टर के बालाचंदर रहे, कमल हासन और रति अग्निहोत्री इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में दिखे। और जो इस फिल्म के गायक थे ना SP बालासुब्रमण्यम, उनकी भी ये पहली हिंदी फिल्म थी और इसके बाद तो उन्होंने बहुत सारी हिंदी फिल्म्स में प्लेबैक किया और बहुत ही लोगों के दिल में दिमाग में उनकी जो आवाज़ थी, उनकी जो एक स्मूथ सी आवाज़ है, बहुत ही जैसे बोलते हैं मधुर सी, दिल को छूने वाली, दिल की गहराइयों में उतर जाने वाली आवाज़ लोगों ने, सुनने वालों ने बेहद पसंद की। और उनकी गायकी के लिए इस फिल्म में एक दूजे के लिए फिल्म में जो उन्होंने गायन किया, उनकी गायकी के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही शानदार सा नगमा लता मंगेशकर और SP बालासुब्रमण्यम की आवाज़ में।

बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना, दिल में उतर जाने वाला गीत था एक दूजे के लिए फिल्म से, और दर्शकों को ये फिल्म भी बहुत पसंद आई थी, और गाने भी इसके, जैसे फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट थी ऐसे गाने भी बहुत ज़्यादा, इस फिल्म का म्यूज़िक भी हिट हुआ था। और अब आप तक पहुंच रहा है एतबार फिल्म से एक बहुत ही, ये गीत भी जैसे मुझे लगता है आपको भी बहुत पसंद होगा, 1985 में रिलीज़ हुई थी ये फिल्म, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म रही। राज बब्बर, डिम्पल कपाड़िया और सुरेश ओबराय मुख्य भूमिकाओं में दिखे। बप्पी लहरी जी ने म्यूज़िक कंपोज किया था इसके गीतों का, और इस गीत को जो आप तक पहुंच रहा है भूपिंदर सिंह

आशा भोसले की आवाज़ में आप सुनेंगे, और गीत के जो बोल हैं कमल हसन कमाल के और फारूक कैसर के हैं। तो चलिए देर ना करते हुए सुन लिया जाए ये गीत, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, फिल्म एतबार।

सागर सरहदी के निर्देशन में बनी 1982 की फिल्म बाजार से ही आपने गीत अभी सुना, लता मंगेशकर और तलत अजीज साहब की आवाज में। फिल्म अगर आपने देखी हो तो सभी कलाकारों का अभिनय कौशल देखते ही बनता है। संगीत की धुनों से इन गीतों को सजाया था। इस फिल्म के जो गीत थे मोहम्मद जहूर खयाम ने और गीतकार रहे मीर तकी मीर, मिर्जा शौक, बशर नवाज। और फिल्म में समता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह, फारूक शेख ने मुख्य किरदारों को निभाया था। तो बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना, रात के इस आलम में इस तरह के गीत दिल को किस तरह का सुकून देते हैं ये तो सुनने वाले खुद बता सकते हैं, बयां कर सकते हैं। और अगला जो गीत है वो भी बहुत ही दिल की गहराइयों में उतर जाने वाला गीत है। फिल्म साथ साथ से 1982 की हिट ड्रामा मूवी रही, जिसमें फारूक शेख और दीप्ति नवल मुख्य भूमिकाओं में दिखे। पटकथा और निर्देशन रहा फिल्म में रमन कुमार का, गीत संगीत जबरदस्त रहा और फिल्म भी काफ़ी मनोरंजक रही। चित्रा सिंह और जगजीत सिंह के गाए गीत दिल को छू गए। तो जावेद अख्तर साहब के लिखे हुए गीत और संगीत तैयार किया कुलदीप सिंह ने। तो सुन लेते हैं फिल्म साथ साथ से गीत जगजीत सिंह की आवाज़ में।

और इस सफर का आखिरी गीत सुन लेते हैं फिल्म शराबी से, आवाज किशोर कुमार साहब की। फिल्म का इस गीत का संगीत तैयार किया है बप्पी लहरी ने और गीत के बोल हैं अनजान के। प्रकाश मेहरा साहब की ये फिल्म है, निर्देशित फिल्म है, एक प्रसिद्ध जैसे बोलते हैं हिंदी ड्रामा फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन, जयप्रदा, प्राण और ओम प्रकाश मुख्य भूमिकाओं में दिखे।

कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद समाचारों के बाद 1:10 पर आप और मैं फिर होंगे साथ साथ यही आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं।
1: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इनमें त्रिशूली एक परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वे लापता हैं। मंत्रालय ने बताया कि कल 149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच गए हैं। उधर चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। उधर नेपाल में आई भयानक बाढ़ के बाद वहां फंसे महाराष्ट्र के 290 लोगों के सुरक्षित होने की पुष्टि हुई है, जबकि 60 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। आपदा के समय नेपाल में महाराष्ट्र के जिन 395 लोगों के मौजूद होने की जानकारी मिली थी, उनमें से 105 भारत लौट रहे हैं, जबकि राज्य नियंत्रण कक्ष का बाकी 290 लोगों से संपर्क हुआ है। वे सुरक्षित हैं लेकिन वहीं फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के कल 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन परियोजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

0: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्य बल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कच्चे माल और तैयार उत्पादों का परीक्षण, मापांकन और गुणवत्ता मूल्यांकन करने वाली केंद्रीय सरकारी परीक्षण प्रयोगशाला नेशनल टेस्ट हाउस आज बेंगलुरु में अपना 115वां स्थापना दिवस मनाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल होंगे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by the flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar informed this in a social media post. The minister said that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jayashankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and recce team for tunnel rescue operations is also on board. He also reiterated India's support to Nepal's ongoing relief and rescue efforts. Earlier, India had sent more than 47 tons of emergency relief supplies in two flights. Meanwhile, the death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 547, with 1,545 people are still missing as rescue teams searched riverbanks and isolated settlements to survivors and bodies swept downstream. Authorities have evacuated more than 800 people from affected districts and issued fresh warnings after a 5.1 magnitude earthquake struck southwestern China, raising fears of further flooding. India has launched a major rescue and relief operation. The Ministry of External Affairs has said that 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said around 100 people of Indian origin holding other nationalities also remain uncontactable. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian nationals have been rescued so far in Nepal following flash flood tragedy. These include 63 workers of the Trishuli 1 project and 21 people from Tamil Nadu. Mr. Jaiswal informed that the media that 21 Indian nationals from Tamil Nadu who had reached Kathmandu from the flood-affected area on Thursday have arrived in New Delhi yesterday. External Affairs Minister Dr. Jayashankar yesterday met the group of 21 pilgrims belonging to Tamil Nadu in New Delhi who were rescued from Nepal. Later talking to the media, he thanked the government of Nepal and its army for the rescue efforts. On the Chinese side, External Affairs Ministry spokesperson Jaiswal said that around 400 Indian nationals are safe and in contact with their families. Mr. Jaiswal said that the government has set up a control room in the Ministry of External Affairs, which is working round the clock, he said. Indian embassies, both in Kathmandu and Beijing, have also set up a 24/7 helplines. Prime Minister Narendra Modi will embark on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan today. In the first leg of the trip, Mr. Modi will reach Uzbekistan's capital, Tashkent, today. During the visit, Prime Minister Modi and President

एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्स। रात के अंधेरे, रात के गलियारे, यादें मानो तेजी से दौड़ी आ रही हैं, एक के बाद एक, थमने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे में आप अकेले हैं तो ये यादें बहुत सताती हैं, जिनसे कभी आप आबाद थे, यथार्थ में आबाद तो अभी भी हैं, ख्यालों में, ख्वाबों में, यादों में, बातों में, जहन में, दिलो दिमाग में। खैर, जब जब रातें होंगी ये मन का अंधियारा फैलेगा तो दुखती रगों को जरूर छुएगा। दुखन, ये घुटन, ये चुभन, कसक तो बहुत उठेगी। दुखती रगों को छूती ये यादें टीस तो बहुत देंगी। यहां ये बात जरूर कहनी होगी कि भाई दुख निकल जाए, बह जाए, बट जाए, यही इसका सबसे बढ़िया मरहम है। तो चलिए यादों की इन गांठों को खोलते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ बांटते हैं और एक खुशनुमा माहौल से सहला लेते हैं इन दिल के जख्मों को सुहाने गीतों के जरिए, गीत सुहाने में। आकाशवाणी गोल्ड 100.1, अंजलि है आपके साथ।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी साहब को आपने सुना दिल तेरा दीवाना फिल्म से। कोई कहता है प्यार नशा बन जाता है, कोई कहता है प्यार नशा बन जाता है, कोई कहता है प्यार सजा बन जाता है, पर प्यार करो अगर सच्चे दिल से तो वो प्यार जीने की वजह बन जाता है। माया फिल्म में लता जी और रफी साहब।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: ऐ सनम जिंदगी का बहाना।
1: और जो अब गीत आप सुनने जा रहे हैं बहुत ही जैसे आपके दिल को पसंद आएगा, मिस मैरी फिल्म से है, लता जी की आवाज़ में और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। दौलत नहीं, शोहरत नहीं, ना वाह चाहिए, कैसे हो बस दो लफ्ज़ों की परवाह चाहिए। बस यही करने से चूक जाते हैं हम, बड़ी बड़ी हसरतें, इच्छाएं, तमन्नाएं लगा बैठते हैं ज़िंदगी से, पर क्या है ज़िंदगी कोई समझ ही नहीं पाया। हाँ, बयां बहुत कुछ किया गया है इसके बारे में। कभी कभी ज़िंदगी एक पल में गुजर जाती है और कभी कभी ज़िंदगी का एक पल नहीं गुजरता। सोच भले अलग अलग हो पर इसी उतार चढ़ाव के साथ गुजर जाती है ज़िंदगी, क्योंकि वक्त जनाब बड़ा बलवान है, किसी के रोके रुका है कभी। वक्त रहता नहीं कहीं टिककर, आदत इसकी भी आदमी सी है।

तेरा इंतजार मुझे हर पल रहता है, हर लम्हा तेरा एहसास रहता है। तुझ बिन धड़कने रुक सी जाती हैं, तू मेरे दिल में मेरी धड़कन बनकर रहता है।

तमन्नाओं के ये दिए जलते रहेंगे, मेरी आंखों से आंसू निकलते रहेंगे। आप शमा बनके दिल में रोशनी तो करो, हम तो मोम बनकर यूं ही पिघलते रहेंगे।

उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है, अगर हौसला है तो हर मौज में किनारा है। रात तो वक्त की पाबंद है ढल जाएगी, रात तो वक्त की पाबंद है ढल जाएगी, देखना ये है चिरागों का सफर कितना है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्ज़ियोयेव के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज़्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं।
1: भारत और उज़्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इनमें त्रिशूली एक परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वे लापता हैं। मंत्रालय ने बताया कि कल 149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच गए हैं। उधर चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के कल 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्य बल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आकाशवाणी गोल्ड 100.1 और 2:11 हुए हैं। ये वक्त रहता है रात सुरमई का, रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। बस गीतों की कुछ ऐसी ही बयार इस वक्त बहेगी जो सुकून और शीतलता दोनों महसूस कराएगी। गीतों की मिठास, गीतों की खुशबू जब चारों तरफ फैली हो तो क्यों ना मन मदमस्त हो उठे। नदी का किनारा, प्रकृति का सहारा, चांद तारों की छांव, सभी कुछ महसूस कर पाएंगे। यहाँ तन स्वस्थ हो, मन खुश हो तो चारों तरफ खुशनुमा माहौल नजर आता है, और ऐसे ही नजारों के बीच मधुर मीठा दिल में उतरता संगीत खामोशियों में खामोशियों से कुछ कहता। यही कहना सुनना मीठी और प्यारी यादें हमारे जहन में बसा देता है। तो चलिए बहुत सारी न्यारी प्यारी अजीज यादों को यहाँ बटोरते हैं, इकट्ठा करते हैं, ताकि रात की तन्हाइयों में इनका साथ भी साथ दे। आकाशवाणी गोल्ड 100.1 रात सुरमई, अंजलि है आपके साथ।

अपनी सांसों में महकता पाया है तुझे, अपनी सांसों में महकता पाया है तुझे, हर ख्वाब में बुलाया है तुझे। क्यों ना करें याद तुझको, क्यों ना करें याद तुझको, जब खुदा ने हमारे लिए बनाया है तुझे।

दिल की किताब में गुलाब उनका था, दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था। कितना प्यार करते हो जब हमने पूछा, मर जाएंगे तुम्हारे बिना, ये जवाब उनका था।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, और इस वक्त रात सुरमई का ये सफ़र मैं और आप तय कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि गाने आपके दिल को छू रहे होंगे, बातें भी कहीं ना कहीं दिल में पहुंच रही होंगी। शान से हम तेरे दिल में रहेंगे, शान से हम तेरे दिल में रहेंगे, तेरी मोहब्बत पे जान निसार करेंगे, देख के जलेगी हमें दुनिया सारी, इस कदर बेपनाह तुझे प्यार करेंगे।

जब से देखा है तेरी आंखों में झांक कर, जब से देखा है तेरी आंखों में झांक कर, कोई आईना अच्छा नहीं लगता। तेरी मोहब्बत में ऐसे हुए दीवाने, तुम्हें कोई और देखे तो अच्छा नहीं लगता।

इसी के साथ अंजलि आपसे ले रही है इजाजत, लेकिन आप सुनते रहे आकाशवाणी गोल 100.1। आगे का सफर भी जारी रहेगा और आपके साथ रहेंगी माधुरी। कुछ ही देर में सुनिएगा समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति शिक्षा, जनसेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग जगत और शैक्षिक जगत के बीच सहयोग, मत्स्य पालन से जुड़े कार्यक्रमों तथा प्रमुख सार्वजनिक समारोहों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के इरोड में कोंगु वेल्लालोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट के स्थापना दिवस में समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति बेंगलुरु जाएंगे, जहां वे विधानसौधा में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के जन्मशती समारोह में शामिल होंगे। रविवार को उपराष्ट्रपति केरलम के अलापुझा जाएंगे, वे केरल कौमुदी की 115वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वे पतनम मतिट्टा जाएंगे और वहां अरनमुला जल महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। श्री राधाकृष्णन तिरुवनंतपुरम में केरलम के प्रमुख सांस्कृतिक त्योहार ओणम पेजेंट्री का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं।
1: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इनमें त्रिशूली एक परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वे लापता हैं। मंत्रालय ने बताया कि कल 149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच गए हैं। उधर चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्य बल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अमेरिका ने ईरान की सरकार को और वहां की सेना के वित्तीय स्रोत काटने की कोशिश के अंतर्गत ईरान के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक मेल्ली के एक वरिष्ठ अधिकारी और हांगकांग की एक कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिकी वित्त विभाग ने बैंक मेल्ली की दुबई शाखा के प्रबंधक रजा मोहम्मद तईदी को निशाना बनाया। उसने कहा कि यह बैंक

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर सुन रहे हैं और आज की रात हमराही लेकर माधुरी है आप सभी के साथ।

अजनबी फिल्म का ये गीत सुना आप सभी ने किशोर कुमार और लता जी की आवाज़ में आर डी बर्मन के संगीत से सजा हुआ। और प्यार की जो महक होती है वो ऐसी ही होती है, किसी को भी दीवाना कर देती है। बारिश बारिश नहीं लगती, धूप धूप नहीं लगती और हवा हवा नहीं लगती। लगता है कि ऊपर आसमां में चांद हो और नीचे बस किसी तरह छुप छुपा के हम बैठे हों और बातें कर रहे हों।

देवता फिल्म से ये गीत सुन रहे थे आप लता जी और किशोर कुमार के आवाज़ में, और ये है ख़ास कार्यक्रम जिसका नाम है हमराही। और ख़ास इसलिए है क्योंकि युगल गीतों की ख़ास प्रस्तुति होती है इस कार्यक्रम में, जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं।

किशोर और लता जी की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत सुन रहे थे आप। फिल्म फिर वही रात से आरडी बर्मन का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी के लिखे बोल। और सच्ची है कि प्यार में एक अजब सी खुमारी होती है, क्या से क्या हो जाता है। अच्छा भला जो इंसान है वो तबाह तो नहीं करूँगी, लेकिन हाँ ये कहूँगी कि उसमें मोहब्बत भर जाती है। हम मोहब्बत सिर्फ उसी से नहीं करते जिसे हम मोहब्बत करना चाहते हैं। मोहब्बत इंसान को सच में बदल देती है, वो सबसे मोहब्बत करना सिखाती है। ऐसा नहीं है कि हम एक से मोहब्बत कर रहे हैं और दूसरे से जो है हम नफरत पाल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मोहब्बत अलग ही लेवल की जो है वो शय है। और देखिए ना, शायर भी क्या कहते हैं कि नींद भी, बेदारी भी, ख्वाब भी, आंसू भी, क्या क्या है इन आँखों की अलमारी में। एक ही रंग का फूल था लेकिन ले आया एक सतरंगी तितली को फुलवारी में। तुझसे पहले पहुंचूं राह तकूं तेरी, कुछ बुद्धूपन भी है इस होशियारी में। सच में मोहब्बत में थोड़ा बुद्धूपन तो होता ही है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये सफर है हमराही का, जी हाँ, ड्यूट गीतों की खास पेशकश, जिसे लेकर आज की रात माधुरी आप सभी के साथ। तो चलिए सुनते रहते हैं इन गीतों को।

मोहब्बत का कोई सदमा उठाना चाहिए था, भुलाया था जिसे वो याद आना चाहिए था। मेरी अपनी और उसकी आरजू में फ़र्क ये था, मुझे बस वो उसे सारा जमाना चाहिए था।

रात्रि के 3:48 और हो गए हैं पूरे 20 सेकेंड। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और कार्यक्रम है हमराही।

फिल्म धर्म करम का ये गीत सुन रहे थे आप, मुकेश साहब, किशोर कुमार और आशा भोसले साथियों की आवाज़ में, आर डी बर्मन का संगीत, मच्छू सुल्तानपुरी के लिखे बोल। और प्यार की बात चली तो ख़त्म कहाँ होती है, कहीं नहीं होती, उसकी मंजिल बदलती जाती है और आगे बढ़ती जाती है, बातें यूं ही चलती रहती हैं। हर गीत में मोहब्बत भरी हुई है और हम यही तो चाहते हैं कि सबके दिल मोहब्बत से भर जाएं। रात यूं

दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, जैसे सहरे में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को चुपके से दवा मिल जाए। और आराम से ये गीत भी बज जाए। फिल्म दिलजला से ये गीत है आप सभी के लिए, आशा जी और किशोर कुमार की आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं।
1: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इनमें त्रिशूली एक परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वे लापता हैं। मंत्रालय ने बताया कि कल 149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच गए हैं। उधर चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्य बल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट 2026 के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति शिक्षा, जनसेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग जगत और शैक्षिक जगत के बीच सहयोग, मत्स्य पालन से जुड़े कार्यक्रमों तथा प्रमुख सार्वजनिक समारोहों में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन संथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन 2026 का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने स्थानीय खिलाड़ी हंगरी के बालास फारकश को सीधे गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। विश्व में 54वीं वरीयता के खिलाड़ी वेलवन संथिल कुमार ने बालास फारकश को 11-4, 11-2, 11-3 से सीधे गेमों में हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। 10वां महिला एशिया कप कल संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आरंभ हो गया है। एशिया कप के 2026 के इस संस्करण में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिन्हें 4-4 के 2 समूहों में बांटा गया है।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप, और ये सफर है अरुणिमा का, जिसे लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। स्वागत है अरुणिमा के इस सफर में आप सभी सुनने वालों का। यूं ही हमें सुनते रहिए, यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल के साथ।

फिल्म रेशमा और शेरा से ये गीत आप सभी के लिए था लता जी के आवाज़ में। और कुछ गीत लंबे ज़रूर होते हैं लेकिन इतने मधुर होते हैं कि धीरे धीरे हमारे दिल को छूते जाते हैं, भिगोते चले जाते हैं। उन्हीं गीतों में से एक गीत ये था जो अभी आपने सुना। दरवाज़ा बंद रखने से भी क्या मिला मुझे, आवाज़ दे रहा था तेरा रास्ता मुझे।

फिल्म द ग्रेट गैम्बलर से ये गीत सुना आप सभी ने लता जी की आवाज़ में, और साथ ही साथ कहीं कहीं और आवाज़ें भी थी, शायद आपने पहचाना हो। चलिए बताइएगा कि आपने पहचाना उन आवाज़ों को। और रात के इस पहर में अब क्या कहूँ कि हम मुसाफिर हैं एक कश्ती के, दोस्त बन जाएं तो बुरा क्या है। अब ये सोचा है खुश रहें, देखिए तकदीर में लिखा क्या है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अरुणिमा का ये सफ़र है और समय हो गया है सुबह के 4:34:10। माधुरी है आप सभी के साथ और हम इस सफ़र में सुन रहे हैं बेहद खूबसूरत गीत। गम तो खैर सबके पास होता है और सबके दिल में रहता है, पर अपना गम सभी को ज़्यादा लगता है। मुझे अपना लगता है, आपको अपना लगता होगा, लेकिन इस सबसे अगर परे होके देखें तो ज़िंदगी की खूबसूरती इन्हीं गम और खुशी के उतार चढ़ाव में छिपी हुई है। अब इस पर एक शेर भी

0: आपके पेशे नज़र कर देती हूँ कि तुझे इस गम का अंदाज़ा नहीं है, तुझे इस गम का अंदाज़ा नहीं है, ये दिल का गम है, दुनिया का नहीं है।
1: अब अगर हम

जी आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि ये जो हर पल है सबको रास आए। और बहुत सारी बातें हम और आप मिलकर करते हैं और इस सफ़र को आगे बढ़ाते जाते हैं। अभी बहुत ही खूबसूरत गीत सुना आपने फिल्म लैला मजनू से, और अब अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म प्रेम रोग से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

अरुणिमा का ये सफर है आकाशवाणी के FM गोल्ड दिल्ली पर, और 100 बज अरुणिमा में आगे बढ़ते हुए और कुछ बातें हम और आप कर लेते हैं। बहुत खुश है कि वो तन्हा नहीं है, मगर जो साथ है उसका नहीं है। वो चाहे तो अलग हो जाए मुझसे, वो मेरा दोस्त है साया नहीं है। उसे अपना शरीक गम करूं क्या, वो मेरा है मेरे जैसा नहीं है। मैं आखिर किस तरह समझाऊं उसको, मेरे कब्जे में ये दुनिया नहीं है। हजारों बार मैं हारा हूं, लेकिन कभी मुझसे कोई जीता नहीं है। और न जाने कहां रूपोश है, कई दिन से उसे देखा नहीं है। हम चलते चलते खुद में खुद को ढूंढते हुए कितनी आगे निकल जाते हैं, और फिर पाते हैं कि क्या हम में हम हैं।

देखिए ना, रात का ये पहर भी बीतते बीतते बस बीतने को है, और अरुणिमा का ये सफर अब हम यहीं समाप्त करते हैं। फिलहाल चलते हैं समाचार कक्ष की ओर, लेते हैं देश दुनिया का हाल, यानी सुनते हैं समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के

0: राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने वर्ष 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया था। इस दौरान द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं।
1: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अभी लापता हैं। दक्षिणी पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इनमें त्रिशूली वन परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा है कि 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो सका। मंत्रालय ने बताया कि कल 149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंचे हैं। उधर चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें निकालने का काम जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप की 3 दिन की यात्रा पर आज जा रहे हैं। इस दौरान उपराष्ट्रपति शिक्षा, लोक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग जगत और शिक्षा जगत के बीच सहयोग, मत्स्य पालन से जुड़े कार्यक्रमों तथा प्रमुख सार्वजनिक समारोहों में शामिल होंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितम्बर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट 2026 के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन की दर 6.7% रही। इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही, हालांकि इस अवधि में विकास की गति जून से कम रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम का ये 137वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालास फरकाश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi will embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan today. In the first leg of the trip, Mr. Modi will reach Uzbekistan's capital, Tashkent, today. During the visit, Prime Minister Modi and

देशपांडे दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप। और अब शुरू हो रहा है भोर सुहानी का ये सफर। हमारे बहुत सारे रात के जो श्रोता हैं वो तो हमें सुन ही रहे हैं, लेकिन सुबह जल्दी उठने वाले हमारे श्रोता भी अब उठकर हमसे जुड़ रहे होंगे। तो सभी को सुप्रभात। सुबह के 5:11 और हो गए हैं पूरे 18 सेकेंड। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती है माधुरी इस कार्यक्रम भोर सुहानी में।

दो कलियां फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे लता और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, संगीत रवि का और बोल साहिर लुधियानवी के। और जब वक्त बदलता है ना तो हालात भी बदलते हैं और इंसान अच्छे बुरे हालात से गुजरता है, धीरे धीरे परिपक्व होता जाता है। और सच्ची कहा है कि वक्त बहुत कुछ सिखा देता है। वक्त के साथ हम सीखते चले जाते हैं और फिर समझते हैं कि जो ज़िंदगी गुजरी है उसमें बहुत कुछ अच्छा बुरा जो हुआ उसमें हमारा जो करदार है वो कुछ और भी हो सकता था। और इसी पे दो लाइनें और नज़र करती हूँ मैं, आपके गौर फरमाइएगा कि परेशानी अगर है तो परेशानी का हल भी है, परेशानी अगर है तो परेशानी का हल भी है, परेशान हाल रहने से

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: के 5:29 और हो चुके हैं पूरे 25 सेकेंड। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 MHz पर। ये सफर है अरुणिमा का और माधुरी एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को कहती है सुप्रभात।